ला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा के हा सो कर के हा जित बह सर्ब संभाले वाजे तेरे नाथ अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे

सुंदर गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहन या मन मोहन, सुर्ग मच्छ पयाले, गावन तुदनो रतन उपाए तेरे, अठसठ तीरथ नाले, गावन तुदनो जोध महाबल सूरा, गावन तुदनो खाणी चारे, गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर

चित न आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है पी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिन उपाई। कर देखै कीता आपना, जो तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई। सो पात साहू साहा पत साहिब, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कुए। केवड वड्डा डीठा हुए, कीमत पाए न कहया जाए। कहने वाले तेरे रहे समाए।

की तिलवडियाई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलके आखण पाहे, वड्डा न हुवै घाट न जाय, ना उह मरै।

जेवड आप तेवड तेरी दात जिन दिन करके कीती रात खसम।

मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, चित हर रस पाया, मिल जन न

शैल पत्थर मह जंतु उपाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सुतरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भओ करिया।

मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अस्त सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सत बल जाइए।

हौ तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्याव है हर

हर हर रूप समासी शे धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे।

तेरी अनिक करह हर पूजा जी, तप तपह जपह बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्योवाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम काबू आप हाथ दै मुहे बचावो सुखी बसै मोरू परिवारा सेवक सिख सब कर तारा मूरछा निज कर दै करिय सब बैरन कौआ सुंगरिय पूर्ण हुए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं।

जानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकर्क करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत।

ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।

गुरमुख सुख फल परम रस, सहज समाद साध संग जानी। गुर अर्जुन विट्टहो कुर्बानी।

0: सर्वधानन कर रंग
1: प्रभु कै सिमरन वेद सिद्ध नाम प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: कै सिमरन जप तप पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगह मानी
0: प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सफल फला
1: जे सिमरन जिन आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभु कै सिमरन शक्ति ऊंचा प्रभु कै सिमरन उधरै मूचा
1: प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु कै सिमरन

0: पदे। जह मात पिता सतमीत न पाई, मनुहा नाम तेरा संग सहाई।
1: केवल नाम सन तेरा चला।
0: जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी।
1: मन में जल रस नहीं

0: जन्म मर जाम नाम जपत पावे विश्राम। ऐसा नाम जप हो मन रंग नानक पाइये साधक संग। पिंड महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा। जय महाभयान तपत बहु काम तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। संत जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम। हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात। मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत विवेक। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब पर न भंग। हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नहीं बियोग। हर हर जन के मल खजीना हर तन जन को आप प्रभ दीना। पोत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते।
1: हर का भगत प्रकट नहीं छपे
0: हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग के ते तरे।
1: जाते हर को नाम कामते हर हर गुण गान
0: सब दे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा।
1: नाम की महिमा संत विद बसै संत प्रताप दुर सब नसै।
0: संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम

0: सर्व धर्म धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म
1: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया
0: सगल उदम है उदम फला हर का नाम।

0: मैया के गुण चेत परानी कवन मूर्ते कम दृष्टानी
1: सवार
0: व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जो बन भोजन सुख सूध निर्गुण गुण कछु न बुझ बख्श ले हो तो नान कसी जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला।

0: दूरे ताको अंधा जानत दूरे
1: जानी सहज पावे तरकह मान सहज सारे मुद अजान
0: सदा सदाए पूल नहार नानक राखन हारे अपार
1: रतन त्याग कौटी संग रचे साथ छोड़ टूट संग मचे
0: जो छड़ना सो अस्त्र कर मन जो हो अनसो दूर प्राण
1: तोड़ जाए शिष्का श्रम कर संग सहाय तिस पर हर
0: नंदन ले पुतारा तोये गर्द प्रीत पसम संग होए
1: अनुरूप मह प्रगत विचार नानक काट ले प्रभ दयाल
0: हर भूत पशु की मानस जात लोक बचारा करा दिन रात
1: बाहर से शंकर मलाया सत्सनाए कष्ट कर छपाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर

दस वस्तु ले पाचै पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजे सद नमस्कार जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अपनी अमान कछ बहुर साहु ले ज्ञानी मन रोस करे जिसकी बस्तिस आगे रखे प्रभ की आज्ञा मन मथ अनेक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत ज्योति सो चल नहार लपट रहे तह अंध अंधार मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या राजो बंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर कर्त गुमान मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत्ता कै दुर्गंध गोविंद भजन बिन बृथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंढ लावत अवर उपदेश आप न कर आवत जावत जन मै मर जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उंजन चरण पराता आप है आप करत निबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा जिस पावे तिस लये लड़ लाए थान थनंतर रहे समाये।

0: राष्ट्रपति जे प्रसाद छति अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे
1: जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे
0: प्रसाद सुख मंदिर तिसे ते आए सदा मने अंदर
1: जे प्रसाद ग्रह संत सुख बसना

0: सात का सामुख उजल होत सात संगमल सबली खोत
1: सात का संग अभिमान सात का संग प्रकट सुज्ञान
0: सात का संग बुज प्रभु निरा सात संग सब होत नवेरा
1: सात का संग परिणाम रतन सात का संग ऊपर जतन
0: सात की महिमा वर्ण कौन पुरानी नानक सात की शोभा ब्रह्मा सम्मानी
1: सात का संग सात का संग सदा प्रफुल्ल
0: सात का संग आवे बस पंचा सात संग अमृत रस पुंचा
1: सात संग होए सबकी सात का संग मनोहर बैन
0: सात का संग न कतु तावै सात संग स्थित मन पावै
1: सात का संग माया सात संग नानक सब सुख प्रसन्न।

0: सात
1: संग लगा प्रभु मीठा साधु का संकट कर दिठा
0: सात संग आज्ञाकारी सात संगत पई हमारी।

0: अष्ट परी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल मह कमल अलेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लोप जैसे दूर सरल का शोक
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य समान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के तिथि एक यम बंदा को खोजे को चंदन लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल निर्मला जैसे मैं नाना के जरा
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास जैसे तरु पर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मत सकल समान ब्रह्म ज्ञानी का नाही अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रभाव करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी का जबरा न भया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी के प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी से महा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमह
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही संधा ब्रह्म ज्ञानी रे तावत बंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो फला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संत गुरुदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम उधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ब्रह्म ज्ञानी के हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है
1: ब्रह्म ज्ञानी को पूजे महेश्वर मान ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अधे अखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बताने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सा जीव नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का प्रभु प्रभात
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी।

0: अपेक्षा निष्ठ साधु की टहल संग
1: न सुने गाहू के निंदा सब जी जाने आपस को मंदा
0: गुरु प्रसाद दिख्या पर मन की वासना मन के टरा
1: इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कोट मदे को वैसा या पारस
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न।

0: कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट पैसी रतवासी, कई कोट बंधन है उदासी,
0: कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीश्वर होते,
1: कई कोट आत्मत्यासार हैं, कई कोट कब का विचार हैं,
0: कई कोट नवतन नाम त्याव नानक करते का अंत न पावे,
1: कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी,
0: कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभ्यग आत्म निकोर,
1: कई कोट पर कई कोट पर दुख न करें,
0: कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे,
1: नानक करते की जाना करता रचना,
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंक्ति सर्प पाए, कई कोट पात्र कृष्ण जाए,
0: कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल,
1: कई कोट सत्य सूर्य नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र क्षेत्र,
0: सामग्री अपना सूत तार है, नानक जिस भाव है तिस तिस निस्तार है,
1: कई कोट राजस्थान सार्थक, कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र,
0: कई कोट किए रत्न समंद, कई कोट नाना प्रकार जानता,
1: कई कोट किए चिति, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण की,
0: कई कोट जख किनर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर्मर गाच,
1: सबते निरा सबूते दूर, नानक आप लिख रहा प्रभु,
0: कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म है जीवन है, कई कोट भोजनी फिर है,
0: कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे,
1: कई कोट ये जन्म है, कई

करन करावन करने जोग ज्योतिष पावै सोई होग। हुक्मे धार अतर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मह रहया समाई। प्रभ पावै बिन सास ते राखै प्रभ पावै ता हर गुण पाखै दोहां सिरियां का आप स्वामी खेल बिगसै अंतर जामी। कहो मानुख ते क्या होए आवै जो तिस पावै सोई करावै अनजानत बिख्या मह रचै जे जानत आपन आप बचै। कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तेजन ना मिले। जाका दृश्य कछु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगट आवै। जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास। इसका बल ना ही इस हाथ करन करावन सर्व को नाथ। कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार। कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की होत रवाल कबहू अब कीरत मह आवै कबहू भला भला कहावै। कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावै ध्यान। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनेक जोन पर मैं पर मिया। ज्योतिष पावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोए। अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश। ज्यों जल मह जल आए खटाना त्यों जो

0: के दुखन जमते नहीं छोटा
1: संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए
0: संत का दुखन मत होए मलिन संत का दुखन सो बाते
1: संत कैसे को रखे न कोए संत के दुखन कान प्रस्त होए
0: काल कृपा जी कराए नानक संत संग नंदक पी तरा
1: संत के दुखन ते मुक्त होए संतन के दुखन काग जो लवे
0: संतन का दुखन सर्व जोन पाए संत का दुखन तरगत जोन क्रमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा न जाए संत के दुखन सब कुछ रहे
0: संत का दुखन ते सब जाए संत का दुखन नीच नीच आए
1: संत दुखी का तव को नाहि नानक संत का वैता वो की करताए
0: महत पाई संत का नंद कंटक न पाई
1: संत का नंद महात्यारा संत का नंद परमेश्वर मारा
0: संत का नंद राज तीन संत का नंद दुखियार दीन
1: संत के नंद को सर्व रोग संत के नंद को सर्व योग
0: संत की नंदा दुख में दुख नानक संत पावेता उसका पी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पूरित संत का दुखी किसा का नहीं मिटे
0: संत का दुखी को डान लग गए संत

0: अष्टपदी मानुख की टेक वृथि सब जान देवन को एक है भगवान मार रखे एको आप मानुख के किछ नाही हाथ सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघन न लागे कोए
1: मन में कर निरंकार कर्म मेरे सब व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो
1: ठाकुर का रंग संतन से सब संग
0: चरण चलो मार्ग गोविंद मिट है पाप जपिए हर बिंद
1: नानक उजल मता
0: बड़भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार हनुमत गनी संसार
0: मंथन मुख बोल है हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी
1: एक पुछान दुख की ओ सो जी जाने
0: नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिन्ह निरंजन जानिया
1: जिसकी जानो कृष्णा बुझे
0: साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते हो हर जन रहत
1: अर्जुन कीर्तन केवल दुखियान में कोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिया जम की फासा
1: की जिस मन भूख नाम भूख
0: जिसको हर प्रभ मंचित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे
1: अपना कृपा करे सो सेवा को किससे डराए
0: जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया
1: गुरु प्रसाद सब बुझिया
0: जब देखूं तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोई अस्तु
1: करे
0: आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
1: साफ साफ
0: अविनाशी ना ही किश खंड धारण धार रहे ब्रह्मांड
1: प्रताप आप नानक जाप
0: जिन प्रभ जाता सो सोभावन सगल संसार उधर तिन मंत्र
1: सगल उदाहरण प्रभु कैसे लोग दुख विसारण
0: आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल
1: उनकी सेवा कोई लागे विष्णु कृपा करे बड़ पागे
0: नाम जपत पावह विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर्मान
1: जो कुछ करे सो प्रभु कह रंग सदा सदा बसे हर संग
0: सह सुभाए होवे सो होए करण हार पछाण सोए
1: लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना
0: जिते उपजे तिस माहे समाये ओए सुख निदान उन्हूं बने

0: विघन ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे
1: सर्व सुख नानक ते पाया
0: को जीवालन हार भूखे को देव ते आधार जिसका करण है जो किस बिन दूसर होवा न होगा
1: सब देव निर्मल करणी।

0: कष्ट पदी चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत विघ्नहार नाम सत सत ध्यान हार
0: आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी भजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए जहाँ कह हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया बस्त महले बस्त गटाई ताको भिन्न न कह न जाई ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर को सेवक जान संग प्रभ का सेवक नाम कह रंग सो सेवक जिस दया प्रभ धार नानक सो सेवक सास सास समार अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आफत राखे कोई न राखे
0: प्रभ के सेवक को न पहुँचे प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दे विस्तर काया
0: नीकी कीरी मह कल राखे पसम कर लश्कर कोट लाखे मानस जतन करत बहु पांत तिसके कर्तव्य व्यर्थे जात
1: सोए
0: काहे सोच कर हरे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी नाम रतंजन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नाम है नाम समाने बोलो जस जे बा दिन रात प्रभ अपने जन की नींद
1: अपने
0: जो हुआ हो सो जान प्रभ अपने का हुक्म पहचान
1: जानो
0: आठ पहर प्रभ सह हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे
1: मन मेरे दिन की ओट ले मंत्र ने अपना तिन जन दे
0: तिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता
1: जिसकी
0: अवर से अनप सगली छाड़ तिस जन की

0: शांति नाम करो विचार एक सिमर नाम याद सम्राथ दृढ़ कर गौ नाम हर बात
1: संचो
0: राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे मीत सो सुख साधु संग परीत रोग न जाए रोग मिटाय हरे अब कद लाए
1: निदान
0: पर बुद्धो हर कर नाये दिस्तावत आवठाए।

0: पाटी जम्फासी
1: विचार कह जन साचा जन्म मरे सो का चो का चा
0: गौन मटे प्रभु सेव आप त्याग पह आप त्याग शरण गुरुदेव
1: रतन जन्म का हुए उदार हर हर सिमर प्राण आधार
0: भावना छूट न हारे सिमरत सासत भेद बिचारे
1: भगत करो मन लाए मन मन चतना निष्फल पाए
0: चाल तेरा तना तू क्या लपटा वह मूर्ख मना
1: कुटुम्ब अर बनीता इनते कहो तुम कौन सुनाता
0: माया विस्तार इनते कहो कौन छुटकार
1: तीरथ सवारी टूटा डम झूठ पासारी
0: ये तिस बजाना बिगाना नाम विसार नानक पछताना
1: मासूम भगत
0: भगत करो मन मीत निर्मलो।

0: को देखो नानक झाके मस्तक लेख
1: देखो जब देखो साला रे एक सिंह एको मन वाले
0: गुण गाओ अनंत मंत्र जाप एक भगवंत
1: देखो।

0: जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देव हो हर नाम
1: की मांगो सूर बाल ब्रह्म श्रद्धा पूर
0: सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें ते आवो एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार चाख्या से जन तृप्ता ने पूरन पुरख नहीं डोला ने
1: ऊपर परे प्रेम रस रंग उपजय चाओ साध के संग
0: परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग
1: भागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई
1: धन को प्रभु होए दयाल सेवक कीनो सदा निहाल
0: बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया
1: सुनी सरदा सपूरी रव रया सत्संग हजूरी
0: जिसका सातिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाये सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया
1: सो क्यों बिसरे जे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे
0: सो क्यों बिसरे जे बिखते काट जन्म जन्म का टूटा गंढ है
1: प्रभु अपना नानक जन त्याया
0: राजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो आम जपो अमर नाम जपावो
0: भगत पाए तरी है संसार बिन भगति तन हो सी चार सकल दुख का हो वतनास नानक नाम जप हो गुण तास नेत्र हूँ पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए एक वस्त दी जय करमया गुर प्रसाद नाम जप लया
1: नानक
0: बख्शंद दीन दयाल भगत वछल सदा कृपाल
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर प्रतपाल
0: आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान अनेक राज भोग बड़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई
1: भोजन का पर संगीत रचना जपती हर हर नीत
0: भले सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत।

0: सरस्वती
1: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मह

0: वेद पुराण सिमरत मह देख ससियर सूर नक्षत्र मह एक
1: वाणी प्रभु की सबको बोलै आप डोल न कबहु डोलै
0: सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइय गुण है अमोल
1: ज्योत में जाकी ज्योत आयो स्वामी ओत पोत
0: गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मह एहो विश्वास
1: संजना का पेखन सब ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुनह शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जो जो होए सोई सुख मान करन करावन हार प्रभ जान
1: अंतर बसे बाहर पियो ही नाम दर्शन देश मोही
0: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पात
1: एकंकार
0: अनेक कला लखी नह जाए जिस भावे तिस लय मिलाए
1: कवन कहिए दूर आपे आपे आप भरपूर
0: अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना
1: बनाया
0: सबके मध अलिप्तो रह जो किछ कहना सो

0: बेनती करो साध संग अगन सागर तरहो
1: हर तन के पर लेहो पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार
0: सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਆਪ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 709 ਅਤੇ 710 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਿਆ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੇ ਨਮੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵਉ, ਕਲ ਕਲੇ ਸੁਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵਉ। ਸਿਮਰਉ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਅਰ, ਕਿਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕੋ ਆਖਿਅਰ। ਕਿਨ ਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਬ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਦ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭੱਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ। ਸੇ ਸਿਮਰਾ ਹੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛੁ ਸੁੱਝੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮਹੁਤਾਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਬੇਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ।
ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਅਨੰਤ ਕਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਪਹਾਗ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੁ ਨ ਚੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸੁਮਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ, ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਤਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੋਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜੈ ਮਹਾ ਪਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ, ਜਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਪੁਨ ਹੈ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵਹ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ, ਲੱਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ, ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਗਾਵੈ, ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਇਹ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ, ਤਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ, ਅਨਿਕ ਬਿਗਨ ਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ, ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਮ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ, ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਮਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਏ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ, ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾ ਸੰਗ ਤੋਸਾ, ਜਿਹ ਪੈਂਡੈ ਮਹਾ ਅੰਤ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ, ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ, ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ, ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਾਨ ਤੁਜ ਅਕਰਖੈ, ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧਕ ਮਾਤ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀ ਨੋਦਾਨ, ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਬਬੇਕੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨਾ ਭੰਗ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੀ ਬਿਯੋਗ, ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ, ਹਰ ਤਨ ਜਨ ਕਉ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਤ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਤੇ ਤਰੇ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ, ਤੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਸਲੋਕ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਵਧੇ ਫਿਰਿਆ,
अनेक प्रकार किए बहु जतना पूर्ण दान होमे बहु रत्ना शरीर कटाए होमय कर राती वर्त नेम करय बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड प्रथमी फिर चैर जीव महा उदास तपी सरथी वह अग्न माहे होमत प्राण कनक असव है वर भूम दान नेवली कर्म करय बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमुख निमुख कर शरीर कटावे तौ पी हो मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कश नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करै दिन सो अर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कबहू न बिखिया टरै जल तो वह बहुत देह अनीत सुध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच बहुत सयाण पजम का भव व्यापै अनक जतन कर त्रिशन ना त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सिजै शूट सुनाही ऊप पयाल मुहे व्यापह माया जाल अवर करतूत सगली जम डान गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मंगै साद जना की सेवा लागै जे को आपू ना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सत गावै जे को अपनी सोभा लोरै साध संग ए होमै शोरै जी को जानम मरण ते डरै साध जना की सरणी पर जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन कौ तन तेरो नाऊ निथावे कौ नाऊ तेरा थाऊ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल कटा कौ देव अवदान करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानू आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्ब धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मैं उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जिहे कट वसै हर नाम सलोक निर्गुनियार के अन्या सो प्रभ सदा सम्माल जिन किया ते सचीत रख नानक निभि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अगन में जिने उभारिया बार बविस्था तुझे प्यार दूध भर जोवन भोजन सुख सूद बिरद भया उपर साख सैन मुख प्याओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लिहो तौ नानक सीजै जिह प्रसाद धर उपर सुख बसै सुत प्रात मीत बंता संग हसै जिह प्रसाद पीवै सीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जिह प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काढ लेहु प्रभ आपे आद अंत जो रख नहार तिस्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नाव नेद पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर साध सदा हजूरे ताको अंधा जानक दूरे जाकी टहल पावे दरगै मान तिसे बिसारै मुगद अजान सदा सदा ए भूल नहार नानक रख नहार अपार रतन त्याग कौटी संग रचै साच छोट झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर करमान जो होवन सो दूर परान छोड़ जाए किसका श्रम करै संग सहाई ते सपर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर तहब प्रीत पासम संग होए अंध कूप मैं पतत बिकराल नानक काढ लेहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया शपश नाहे कश करै छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इस नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन सुआ
गल पाथर कैसे तरह अथा जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक ती जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गै लिहो ऊड़ निभावै कहा बुझारत बुझै डोरा निस कहिए तौ समझै पोरा कहा बिसन पद गावै गुंग यतन करै तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो ऊहा उष गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा त्रै संग सहाई सुआवे न चीत जो बैराई तास्यों प्रीत बलुआ की ग्रह पितर बसै आनंद केल माया रंग रस है दृढ़ कर मनै मनै प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहु आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमर सूत्र तहारी तुम ते होए सो अज्ञाकारी तुमरी गात में तो तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी सलोक दीन हार प्रभ छोड़ कै लागयान सुआए नानक कहू न सी जाई बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक बस्त कारण बिखोट गवावै एक भी न दे दस भी हिर ले तौ मूड़ा कहू कहा करे जिस ठाकुर स्यो नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा जाकै मन लाखा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगणत साहु अपनी दे रास खात पीत बरतै आनंद उलास अपनी अमान काश बहुर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुरस का विश्वास न होवै जिस की बस्त तिस आगै रख है प्रभ की आग्या मन है मत है उस दे चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया की हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यो रंग लावै ओ बिनसै ओ मन पछतावै जो दिसै सो चलन हार लपट रहे ओ तह अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावै नेह ताको हाथ न आवै के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लै लाई मिथ्या तन धन कुटंब सुबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती असव बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्भ कोहिरै मिथ्या नेत्र पेकत परत्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै है मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तान नहीं पर उपकार मिथ्या बासलेत विकार बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तान अंध मुख आवत ताकै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाय गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों किरपन के नरारत दाम धन धन ते जन जिह कट बस्यो हर नाउ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर काश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुख हो गंड लावत जनन हार प्रभु प्रबीन बाहर पेख ना काहू पीन अवर उपदेश आप ना करै आवत जावत जनमै मरै जिसका अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करौ बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपे मानै आपे आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यानप सगल ते रहत सब काछ जानै आत्म की रहत जिस भावै तिस लई लड़ लाए थान तनंतर रया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमुख निमुख जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सुजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी
जिहे प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे। जिहे प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस को सिमरत परम गत पावै। जिहे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर। जिहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना। जिहे प्रसाद रंग रास भोग नानक सदा त्याइयै त्यावन जोग। जिहे प्रसाद पाठ पटंबर हडावै तिसे त्याग कत अवर लुभावै। जिहे प्रसाद सुख सेज सोई जे मन आठ पहर ताका जस गावी जाय। जिहे प्रसाद तुझ सब को मानै मुख ताको जस रसन बखानै। जिहे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पत सेती घर जावै। जिहे प्रसाद आरोग कंचन देही लिवला बहु तिस राम स्नेही। जिहे प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत। जिहे प्रसाद तेरे सगल शिदर ठाके मन सरणी पार ठाकुर प्रभ ताकै। जिहे प्रसाद तुझ को ना पहुचै मन सास सास सिमरहो प्रभ ऊचे। जिहे प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करेहे। जिहे प्रसाद अभूखन पहरी जय मान तिस सिमरत क्यों आस की जय। जिहे प्रसाद असव हस्त असवारी मान तिस प्रभ कौ कबहु ना बिसारी। जिहे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपुने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत साध तिसै त्याई। तिसै त्याए जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रख है। जिहे प्रसाद करे पौन बहु दान मन आठ पहर कर तिसका तिहान। जिहे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी। जिहे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप। जिहे प्रसाद तेरी नीति जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जिहे प्रसाद तेरी पत रहै गुरु प्रसाद नानक जस का है। जिहे प्रसाद सुनै करण नाद जिहे प्रसाद पीख है बिसमाद। जिहे प्रसाद बोलै अमृत रसना जिहे प्रसाद सुख सहजे बसना। जिहे प्रसाद हस्त कर चलै जिहे प्रसाद संपूर्ण फल है। जिहे प्रसाद परम गत पावै जिहे प्रसाद सुख सहज समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागहो गुरु प्रसाद नानक मन जागहो। जिहे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार। जिहे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप। जिहे प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे। जिहे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू तास्यो राच। जिहे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सुनाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्ब निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हु लया। जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ। सलोक अगम अगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै। साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग ना कतहु तावै साध संग आस थे तो मन पावै। साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग के स्यों नहीं बैर साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग ना कबहु तावै साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस अगोचरला है साधु कै संग आजार सा है।
साध कै संग बसे थान ऊचे, साधु कै संग महल पहुंचे, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधार, साध संग साजन मीत कुटुंब ने सुतार, साधु कै संग सो धन पावे, जिस धन ते सब कु वरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कश काल, दर्शन भेटत हो तिने हाल, साध कै संग कलुकत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिशरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै, साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाऊ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घाट घाट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जानै, जेता सुनै तेता बखियानै, साध की उपमा तेहु गुण ते दूर, साध की उपमा रही भार पूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बनयाई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई सलोक, मन साचा मुख साचा सोए, आवर ना पेखै एक सबिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मैं कमल अलेप, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्प कौ शोख, ब्रह्मज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान, ब्रह्मज्ञानी कै तीरज एक, ज्यों बसुधा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्मज्ञानी का एह गुनाव, नानक ज्यों पावक का सह स्वभाव, ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्मज्ञानी कै मन होय प्रकाश, जैसे धर ऊपर आकाश, ब्रह्मज्ञानी कै मित्र सत्र सुमान, ब्रह्मज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपनै, है सब ते नीचा, ब्रह्मज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना, आत्मरस ब्रह्मज्ञानी चीना, ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्मज्ञानी ते काश बुरा न पहया, ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्मज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्मज्ञानी कै होय सो भला, ब्रह्मज्ञानी सो फल फला, ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्मज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्मज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्मज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्मज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी कै नाम प्रवार, ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्मज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्मज्ञानी का बड प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड भागी पाई है, ब्रह्मज्ञानी कौ बल बल जाई है, ब्रह्मज्ञानी कौ खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्मज्ञानी कै सगल मन माही, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाय अध्याखर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखानै, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जानै, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार,
ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, सलोक उरतारय जो अंतर नाम, सर्व में पिख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रय रूप न पिख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जन आपस को मंदा, गुरप्रसाद बिखिया पर हरय, मन की बाशना मन ते टरय, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्ये को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते होए भिन्न, कर्म करत हो वै नहे कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछय, केवल भगत कीर्तन संग राचय, मान तान अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरा नाम जपावै, नानक ओ वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन परीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म मैं सोधै, राम नाम सार रास पीवै, उस पंडित

पास प्रेत मुगध पाथर कौ तार है सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगै परवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सो जी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं वियोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेखो खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो व्रताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ आपे करन करावन जोग प्रभ पावै सोई फुन होग पसरेओ आप होय आनत तरंग लखी न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अभिनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल सलोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पहे तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमै उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तहरै कई कोट कब का विचारै कई कोट नवतन नाम त्यावह है नानक करते का अंत न पावह है कई कोट पहे अभिमानी कई कोट आंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट आपे गो आत्म ने कोर कई कोट पर दर्भ कौहिरै कई कोट पर दुख न करै कई कोट माया शरम माहे कई कोट परदेश प्रमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंत्र कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखियत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत तारै नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस तारै कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शास्त कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चैर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वरण थीवे कई कोट जख्य किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सूक्र मृगाच सब ते नेरा सब हूं ते दूर नानक आप अलिपत रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी कई कोट जन्मै जीवै मरै कई कोट बहु जो नि फिरै कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट घालै थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मै चिंत जह जह भाणा तह तह राखे नानक सब किश प्रभ कै हाथे कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ कौ खोजंते आत्म मै पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन कौ मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोट मंगै सात संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन कौ हुए आप सुप्रसन्न नानक ते जान सदा धन तन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो विस्थार कई बार पसरियो पसार सदा सदा एक एक ओंकार कई कोट कीने बहु भांत प्रभ ते होए प्रभ माहे समात ताका अंत न जाने कोए आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहारै एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर पय साध साध ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहज समावै अपने जन को साथ साथ समारे नानक ओहि परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एको हर

ਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਣ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲ ਸੋਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੁ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰੁਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸੁਮਾਵੈ। ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਪਾਖੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵਰ ਨ ਆਵੈ। ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ। ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛਲੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਅਨਜਾਨਤ ਭਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ। ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੈਦ ਸਤਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤ ਕਾਲ ਦੈਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ। ਜਾ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ, ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬਡਾਈ। ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਪੂਰਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ। ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰ ਰੰਗ ਹਸੈ। ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ। ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਕਬਹੂ ਸੋਈ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਬਹੂ ਮਹਾਂਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ, ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ। ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਕਬਹੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ। ਕਬਹੂ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ। ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵਹੀ ਰਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਪਾਹੈ। ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੇ ਧਿਆਨ। ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ, ਕਬਹੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ। ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ, ਅਨਕ ਜਿਉਂ ਭਰਮ ਹੈ ਪਰਮੀਆ। ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉਂ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ। ਜੋ ਕਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼। ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ। ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਤੀ, ਜਿਸ ਕਹਿ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ। ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਵਨਵੰਤ। ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ। ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ, ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ। ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਾਸ਼ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ, ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ। ਫਲ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼, ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟਿਆ ਬਿਹਮਾਨ। ਸੋਚਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪਰਵਾਨ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋਂ ਤਾਰੇ। ਸਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰ ਥਾਰੇ, ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ, ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਵੈ। ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗਾਵੈ, ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ। ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ, ਸਰਬ ਕੀਰੀਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਹੋਏ। ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ। ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ, ਜਬ ਤਹਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ। ਤਬ ਲਗ ਨਿਹ ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ, ਜਬ ਲਗ ਮੋਹੁ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ। ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ਸਹਿਸ ਖਟੇ, ਲਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ। ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ,
अनेक भोग भिख्या की करै नहै त्रिपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ बिचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो केश की नो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूँ कै संग बूझे देखै कर बबेक आपे एक आपे अनेक मरै न बिन सह आवै न जाए नानक सद ही रहा समाए आप उपदेसै समझै आप आपे रचिया सबके साथ आप कीनो आपन बिस्थार सब काश उसका ओ करने हार उसते भिन्न कहो किश होए थान तनंत्र एक सोए आपो ने चले तो आप करने हार कौतक करे रंग अपार मन अप मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कूट मधे किने बिरला चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखयाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा घटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मैं पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरै संत कै दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काव्य ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किर माए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब को शलाए संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावे ता ओए भी गत पाहे संत का निंदक महातताई संत का निंदक खिन टिकन न पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया रदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का नहीं मित्र संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बिकारी संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी को नाही ठाओ नानक संत पावे तन लय मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटे संत का दुखी कतै काज न पहुंचे संत के दुखी पाओ उद्यान प्रमाइय संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर ते थो था ज्यो सास बिना मृत कीलो था संत के दुखी की जड़ किछ नाहे अपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी को अवर न रखन हार नानक संत पावे तन लय उबार संत का दुखी एवं बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यों पावक ईधन नहीं त्रापै संत का दुखी छुटै केला ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पाया नानक ज्योत सुभावे सोई थेया संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइये संत का दुखी ना मरै ना जीवाइये संत के दुखी की पूजै ना आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत कै दुख न त्रिष्के कोई जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मिटै कोई नानक जानै सच्चा सोए सब घट तिसके ओ करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करहु दिन रात तिसे त्यावहु सास विरास सब काश वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार
ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਲੋਕ ਤਜੋ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਜਨਉ ਸਿਮਰਉ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਹੁ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਅ ਰਹਿਆ ਗਾਏ ਬਹੁਰ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ ਮਾਰੇ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ ਮਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਥ ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸਿਖ ਸੁਖ ਹੋਏ ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਉਸ ਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲਹਿ ਜੀਓ ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮੱਥਾ ਬਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੇ ਸੰਸਾਰ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੈ ਏ ਤੋ ਤਕੀਓ ਸੋਜੀ ਜਾਣੈ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣ ਆਪ ਸੁਜੈ ਤਿਸਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ ਆਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਨ ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸਕੀ ਘਟੀਆ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ ਜਿਸ ਕਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਚਿਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੁ ਕਿਸ ਕੀ ਡਰੈ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੂਜਿਆ ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਲਖ ਅਭਿਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਬਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਧਰੇ ਤਿਨ ਮੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਬਿਸਾਰਨ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਪਏ ਨਿਹਾਲ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬਡ ਪਾਗੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ ਜੋ ਕੇਸ਼ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਕਰਣੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨ ਆਏ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪ ਦੀ ਨੋ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗੰਡਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸਾਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬ ਹੈ ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਧਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਾਹੇ ਦਾ ਤਾਰ ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂਟੇ ਹੋਂ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਾਨ ਸਦਾ ਆਰੋਗ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਹੈ ਅਸ ਥੰਮਨ ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸ ਤਰੈ ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਜਿਉ ਮਹਾਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
दुख सुख प्रभ दे बनहार, अवर त्याग तू तिसै चितार, जो काश करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरे अजान। कौन बस्त आई तेरे संग, लापट रहे ओ रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हिरदे मैं तोल। लाद के पसंत है संग चाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल। धन धन कहे सब कोय, मुख उजल हर दरग है सोए। ए हो वापार विरला वापार, नानक थाक साध बलहार। चरण साध के तोहे तोहे पियो, अर्थ साध कहो अपना जियो। साध की धूर करो स्नान, साध उपर जाइए कुरबान। साध सेवा वडभागी पाईए, साध संग हर कीर्तन गाइए। अनक बिघन ते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखै। ओट गही संत दर आया, सर्ब सुख नानक तेह पाया। मेर तक कौ जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार। सर्ब निधान जाकी दृष्टि माहे, पुरब लिखे का लहना पाहे। सब किश तिसका हो करन जोग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग। जप जन सदा सदा दिन रैणी, सब ते ऊच निर्मल ए करणी। कर कृपा जिस को नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जाकै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनियै ते होलोए, जाकै हिरदा एको होए। सच करणी सच ताकी रहत, सच हिरदय सतमुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वरत साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जान सच समाता। सलोक रूप न रेख न रंग केशो, त्रेह गुण ते प्रभ भिन्न। तिसै बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अभिनाशी प्रभ मन मह राख, मानुख की तू प्रीत त्याग। तिस्ते पर नाही किश कोय, सर्ब निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सोजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बखसंद। साध ते की चरणी पाओ, नानक कै मन एहो अन राओ। मन सा पूरन सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन परन जाखा नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सद जाकै, सर्ब थोक सुनिए घर पाकै। राज मैं राज जोग मैं जोगी, तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी। त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। जा की लीला की मित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जन जन दे, जनदास नाम त्या वह से। तेहो गुण मैं जाको परमाए, जन्म मरै फिर आवे जाए। ऊच नीच तिसके अस्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पेक करे एक रंग। नाना भेद कीनो बिस्थार, प्रभ अभिनाशी एक ओंकार। नाना चलित करे खिन माहे, पूर रहे ओ पूरन सब ठाए। नाना भेद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कहट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम कै संग उदरे सुन श्रवन। कर कृपा जिसे आपने नाम लाए, नानक चौथे पद मैं सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी। सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत पत। सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई।
सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जाकै हृदय प्रवेश सत निरत बूझै जे कोय नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जन है अपनी मित गत जिस की श्रेष्ठ सुकरणे हार अवर न बूझ करत बिचार करते किमित न जन किया नानक ज्योत भावै सो वर्तिया बिस मन बिसम भय बिसमाद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जा कै संग करै संसार जन का सेवक सो वडभागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पिहे सच नानक होसी पिहे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत त्यावन हार आप सत सत सब तहारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ बखता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपौ होए बसाना जिस ते उपजया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन न कहना जाई बूझै बूझन हार बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवकी निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जन संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक कौ प्रभ पालन हारा सेवकी रख निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारै नानक सो सेवक सास सास समारै अपने जन का परदा ढाक है अपने सेवकी सर पर रख है अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवकी आप पात रख है ताकि गत मित कोई न लख है प्रभ के सेवक कौ को न पहुचै है प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैदिस प्रगटाया नेकी कीरी मैं काल राख है भासम करै लस्कर कोट लाख है जिसका सास न कढ़त आप ताको रखत देकर हाथ मानस जतन करत बहु भांत मानस जतन करत बहु भांत तिसके करत बिरथे जात मारे न राखे अवर न कोई सर्ब जिया का राखा सोए काहे सोच कर हे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपी है पी अमृत एहु मन तन तृपी है नाम रतन जिन गुरुमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्ट आया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिपताने मन तन नामे नाम सुमाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो जस जिह बा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करै भगत आत्म कै चाए प्रभ अपने स्यों रहे समाए जो हुआ होवत सो जानै प्रभ अपने का हुक्म पछानै तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पहर प्रभ बसा है हजूरे कहो नानक सही जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मन तन अपना तिन जान दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जान सर्ब थोक का दाता तिस की सरन सर्ब सुख पावै तिस कै दरस पाप सब पाप मिटावै अवर सियानप सगली शाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जाना होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सात पुरख जिन जानिया सतगुर किसका नाओ तिस कै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन
ਕਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਮਾਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੈ ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛੁ ਨਾ ਜਨਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ਮਨ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਰਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੇ ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਨੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਉ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹ ਕਹੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪ ਲਿਆ ਨ ਜਾਈਏ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰਬਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦੁਰਗਹਿ ਗਵੇ ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀਆਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਬੇਕ ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਅਨੇਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸੋ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹਿਤੇ ਨਾਸੇ ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ਭਉ ਚੁਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਵਨ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸ੍ਰਵਨ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਓਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ਆਪਣੇ ਚਿਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਕੋਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਭੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਹਾਰੀ ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦਮੈ ਉਰਤਾਰੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੂ ਨਾਮ ਹਰ ਵਥ ਇਹੋ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਤ ਉਠ ਤਾਵੈ ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਬੀ ਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਰੀਤ ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰੈ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ਅਨਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਦਇ ਦਿਸ ਧਾਵ ਤਿਆ ਬੈਠਾਏ ਤਾ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ ਭਉ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬੇ ਨਾਸੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ਆਵਾ ਗਵਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਅਨਕੋ ਭਾਵਨਾ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ
सांगन चालस तेरे तना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अरबनता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया बिसथार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे नाम बिगाना नाम बिसार नानक पशुताना गुर की मत तुह ले आने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मन होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखू मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपू अवरा नाम जपावहो सुनत कहत रहत गत पावहो सार भूत सत हर कु नाउ सहज सुभाए नानक गुण गाओ गुणगावत तेरी उतरस मैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल षाढ़ सियाण पसगली मना साध संग पावे सच तना हर पूंजी सांच करहु व्यवहार इहां सुख दरगा जयकार सर्ब निरंतर एको देख कहो नानक जाप मस्तक लेख एको जप एको साला एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहे ओ प्रभ आप अनक बिसथार एक ते भए एक आराध प्राशत गए मन तन अंतर एक प्रभराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मंगो धूर पार ब्रह्म मेरी सरता पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तो मैं त्यावो चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करौ प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगै नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावै बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुकत जन पया जनम मरण दुख भ्रम गया ऐश पुनी सरदा सब पूरी रव रहया साध संग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पहनै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिख ते काटै जन्म जन्म का टूटा गंढ है गुर पूरे तत इह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरह नाम जपावहो भगत पाए तरिया संसार बिन भगती तन होसी शार सर्ब कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ नेत्रहो पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजै कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरुख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपाए सो होए पुनीत भगत पाए लावै मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनेक राज भोग बड़े आए
हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपति हर हर नीत। भली सो करनी शोभा धनवंत, हिरदय बसै पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सारगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब आकार एहो कछ ना दृष्टिता, पाप पुन तब कहते होता, जब धारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिहन ना जापत, तब हरख सोग कहो किसे व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहां किस होवत भरम। आपन खेल आप वरती जा, नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुरक कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब सेव साकत कहो के तठाए। जब आप ही आप अपनी ज्योत धर, तब कवन निडर कवन कत डर। आपन चले तो आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अभिनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त केस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा। जह निर्मल पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शाल शेदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसै भूख कवन त्रिपतावै। करण करावन करने हार, नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई। जय सर्व कला आपे प्रवीण, तह वेद कतेब कह को चीन। जब अपन आप उर तहरै, तौ सगन अप सगन कहा विचार। जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानके अपनी गत जन हो आप। जह अशल अशेद अभेद समाया, ऊहा किसै व्यापत माया। आपस को आपे आदेश, तेह गुण का नाही परवेश। जह एक है एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जह आपन आप पतियारा, तह कौन कथै कौन सुनने हारा। बहु पेअंत ऊच ते ऊचा, नानक आपस को आपे पहुचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार, तेहो गुण में कीनो बिस्थार। पाप पुन तै पई कहावत, को नरक को सुर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल, होमे मोह परम पह पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बख्यान। आपन खेल आप कर देखै, खेल संकुचै तव नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप, जह पसरे पसार संत प्रताप। दोहू पाख का आपे तनी, उनकी शोभा उनहू बनी। आपे कौतुक करै आनंद चोज, आपे रस भोगन निरजोग। जिस भावै तिस आपन ना लावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथा अगंत अतुलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। श्लोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वरतन हार। ए नानक एक पसरिया, दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथ आप सुनने हार, आपे एक आप विस्थार। जात सुभावै तां सिष्ट उपाय, आपने भाणे लाए समाए। तुम ते पिन नहीं किश होए, आपन सूत सब जगत परोए। जा कहो प्रभ जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सब ताकै हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखै तिस कोई न मारै, सो मुआ जिस मनो बिसारै। तिस तज अवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय।
जी की जुगत जाकै सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ, गुन्ने धान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलहार, पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने करतब जानै आप, अंतर जामे रहो व्याप, प्रत पालै जीअन बहु भांत, जो जो रचियो सो तिसै त्यात, जिस भावै तिस लई मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक इक जानिया, जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस में बिरथी जाए, सेवक को सेवा बनाई, हुकम बूझ परम पद पाई, इस ते उपर नहीं विचार, जाकै मन बसया निरंकार, बंधन तोर भय निरवैर, आन दिन पूजै गुर के पैर, ए लोक सुखिए परलोक सुहिले, नानक हर प्रभ आपे मेले, साध संग मिल करहु आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद, राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का एह सुआओ, आठ पहर प्रभ पेखू नीरा, मिटे अज्ञान बिनसय अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावहो, मन इच्छे नानक फल पावहो, हलत पलत दोए लिहु सवार, राम नाम अंतर उरतार, पूरे गुर की पूरी देखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया, मन तन नाम जप हो ले बलाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए, सच वापार करो हो वापारी, दरगाह निभाए खेप तुम्हारी, एक काटे करखू मन माहे, नानक बाहुर ना आवे जाहे, तिस ते दूर कहां को जाए, उबराय रखन हार ते आए, निरपहु जपै सगल पहु मिटै, प्रभ की कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटाए अहंकार, तिस जन कौ कोई न पौचन हार, सर ऊपर ठाडा गोर सूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सहो तिनिहाल, ताकै निकट न आवत काल, अमर पै अमरा पद पाया, साध संग नानक हर तिहया श्लोक, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगासु, अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समगरी एकस कट माहे, अनक रंग नाना दृष्टाए, नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अनहत तहनाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद, तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहया भगवंत, तरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पाणी बैसंतर माहे, चार कुंट दह जिसे समाहे, तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ, गुरप्रसाद नानक सुख पाओ, वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससी अर सूर नखियत्र मैं एक, बाणी प्रभ की सबको बोलै, आप अडोल न कब हूं डोलै, सर्ब कलाकार खेलै खेल, मोल ना पाइय गुण अमोल, सर्ब ज्योत मैं जाकी ज्योत, धार रहो स्वामी ओत पोत, गुरप्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं इहो विसास, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म, संत जना सुने शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, तिस भावे ता करे विस्थार, तिस भावे ता एकंकार, अनिक कला लखी नह जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप आप भरपूर, अंतर्गत जिसे आप जनाए, नानक तिस जने आप बुझाए,
सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नयन आप पेखनहारा, सगल समग्री जाखा तना, आपन जास आप ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सब कै मद अलिप तो रहे, जो किश कहना सो आपे कहै, आग्या आवै आग्या जाए, नानक जा पावै तां लए समाए, इस ते होए सुनाही बुरा, ओरै कहो किने काश करा, आप भला करतूत आत नीकी, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संग राच, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए तां सो जी पाए, तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान, जो जानै तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए, ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का इह सुआओ जन कै संग चित आवै नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाऊ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित त्या गौतरंग संत जना की धूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरह, हर तन के भर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो, चित चित वहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार, उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल इह रतन, सुनत कमावत होत उधार आप त्रै लोकै निसतार, सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै, प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे, सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पहे सब रेन अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न पहे गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव, आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निबही खेप हमारी, प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत, सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सुहुत निधान, सर्ब इच्छा ताकि पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए, खेम सांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान, चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल के उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख पहने गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कोए सब जुग में ताकि गत होए, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै,
जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुन लाए प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारे, दुलभ देह तत्काल उधारे, निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मल ताके कर्म, सब ते ऊच ताकी शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी, सब ते ऊच ताकी शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

आँख न पाए, मन पक्षियों पर घट जाए, मन मग न चल पंथ, मन धर्म सेती सुनबंध, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कुए, मन पाव है मोक द्वार, मन परवार ऐसा धार, मन तरै तारे गुरु सिख, मन नानक पवै न भिख, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कुए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावै दर गहमान, पंचे सोह है दर्रा जान, पंचा का गुर एक ध्यान, जे को कह करे विचार, करते कह करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझे हुए सचियार, तबले ऊपर किता पार, धरती होर परे होर होर, तिस्ते पार तले कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सब ना लिखिया बुरी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया किता हुए, किता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, किता पसाओ एकु कुवाओ, तिस्ते हुए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई परिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मुह पक्षार, असंख मून लिवलाय तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करहे

तू सदा सलामत निरंकार संख नाव संख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार हुए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुणगाह अखरी लिखण बोलण बाणु अखरा सिर संजोग वखाणु जिन ए लिखे तिस सिर नाहि जि प्रमाए तिव तिव पाए जीता कीता तेता नाऊ विण नावै नाहि को थाऊ कुदरत कवन कहा विचारु वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हथ पैर तन देहे पानी धोतै तो उतर सुखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइयै ओ धोए भरियै मत पापा कै संग ओ तो पैनावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहु आपे बीज आपे ही खाहु नानक हुक्मी आवो जाहु तीरथ तप दया दत्त दानु जिखु पावै तिलका मानु सुनया मनया मन कीता पाऊ अंतरगत तीर्थ मल नाऊ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आस बाणी बरमाऊ सत सुहाण सदा मन चाऊ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति माहु कवन जित हुआ आकार वेल न पाया वेल न पाया पंडती जे हुवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखण लेख पुराण थित वार न जोगी जाने रुत माहु न कोई जा करता सिरठी कौ साजी आपे जाने सोई क्यों करे आखा क्यों सालाही क्यों

क्या मनमंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण किते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे इहो अंत न जाने कुए बहुत

तवार कर कर विखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश एक दूजी भाव लख हो हे लख हो वह लख वीश लख लख गेड़ा आखी यह एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़िया चढ़िया हुए अकीस।

त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनीन है, अनाद है, अजेय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है।

देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौने अनंगी अनाते नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाते समस्ती बेपूते कलंकंग विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जुगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जुग जुगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रे देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानं सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता अदो उर्द अर्धं अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदी अपेदी अनामंग कामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रया छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्त्वं निर्णाते नमस्त्वं परमाते नमस्त्वं गगनजे नमस्त्वं गपंजे नमस्त्वं काले नमस्त्वं पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृत सिद्धं निवासी चरपट चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगी अचल भोगे अचल राजी अटल साजी अखल धर्म लख कर्म सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता

उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कूपन काल जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरुष उदार मूरत अजौ नाद अशेक देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हुई फैल्यो अनुराग नाम कामहीन पेख तामुह नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदै मानता हे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जान नहीं जे वेद और कतेब रूप रंग न जात पासु जानी के जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरति लोक चौदह के बिकै जग जा पी जे जाप आदेवनाद मूर्था प्यु सब जे था परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहता भूत लक अभेश अंगराग नरंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुष्टत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व

एक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व त्यन पेक सर्व शास्त्र न जान नहीं जे रूप रंग रेक परम वेद पुराण जाके नीत भागत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवही वह चित माद पहार छंतव प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्तिन अनाश।

के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूंते एक रति बिन एक रति के मातिम तंग जरे जर संग अनूपो तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी भजान के भूप भली बिदने आवत शीस न जात बिचारे ते भय तो कहा भय भूप तंत को नांगे पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गचान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के बिख है पौन आहार जति जतार सब सुबिचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाहा दुरंत दबाहा सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरूर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार सार की तार पछैया तोर देश मलिंद मुवासन मातिक जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हासु बातन ही चगचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचकन एक सो एक दिवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में फल ही फल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बो पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र जिंद्र निराध जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सती पद अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पथ के प्रस है पग फिर जे नर श्री पथ के प्रस है पग ते नर फिर न देह करेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ ग्रियोलिय सा समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बख्यान सु बैठ के ऐसी ही ऐसी सुबह सुबितायो साच कहूँ सुन लिहु सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो काहू लै पाहन पूज तरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मैं काहू पछा को शीस निवायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो।

आप हाथ दैलिहु उबारी, सर्व ठावर मोह सहाई, दुष्ट दुख तेलिहु बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्रता, किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दुख इनको क्षय करता, श्री अस तो जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाला, मन बाचत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई, अड़ेल सुने गुंग जो याही सुरस न पावई, सुने मूड चितलाय चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर की रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई, संबत सत्र है सहस पनी जय अर सह सुनती।

राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहमत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सदैव भेद कायम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा सग

सदा रहु हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर ता तेरे सब किछ है जिस देहि सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे नाम जिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारु साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस्तियां वड्याईया कह नानक सुनो संतो सब धरु प्यारू साचा नाम मेरा आधारु वाजी पंच सब तित घर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजी कला जित करतारिया पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख हुआ तित घर अन हद वाजी साची लिवै बिन देह निमानी लिवै बाजी हो क्या करे विचारिया तुद बात समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया एस नो हुर थाउ नाही शब्द लाग सुवारिया कह नानक लिवै बाजी हो क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलवे कट्टे ज्ञान अंजन सारिया अंद्रह जिन का मुह तुट्टा तिनका शब्द सच्चा सुवारिया कह नानक हो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै ता सो जन दे जिसनो होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिर है दाह दिसिक नाम लाग सुवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाना पावे कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे आव संत प्यार हो कथ की करह कहानी कथ केरी कित द्वारे पाईए तन मन तन सब सौप गुर को हुक्म मन्या पाईए हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गावो सची बाणी कह नानक सुनो संतो कथ हो कथ कहानी मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिनेत परम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन टगौली पाईया कुर्बान कीता तिसे विटो जिन मोह मिठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ओ कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले साथ तेरा चले नाही तिस नाल क्यों चित लाई ऐसा का मूले ना कीचे जितंत पछोताई है सत गुरु का उपदेश संतु हुए तेरा नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले गम गुचरा तिरंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा अपना तू जान है जी अजंत सब खेल तेरा क्या को आख बखाने आखेता वे कह सब तू है जिन जग तू पाया कहना तू सदा गम है तिरंत न पाया सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तू तू पाए कबीक प्रश्न आया लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कहना जिसनु आप तुट्टा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिक मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना कन्ने हो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना गुरु प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना सुमानी कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली ज्यों तू चलाहे तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाहे तिवै चलै जिना मार्ग पावहे कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावहे जिसनो कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कह नानक सच्चे साहिब ज्यों पावै तिवै चलावहे इहो सुहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सुहेला सतगुरु सुनाया इहो तिन कै मन वसिया जिन तुरों लिखिया आया एक फिर है कनेरे कर है गल्ला गली किने न पाया कह नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहस्यो पवित संगत सुभाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित
जिन गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै बिन सहजै सहसा न जाय नह चाय सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए सह सहज मलीन है कि संयम धोता जाय मन धो शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए कह नान गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाय जी हो मैले बारहो निर्मल बारहो निर्मल जी हो ता मैले तिनी जन्म जुवै हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिर है जो बेतालिया कह नानक जिन सत जिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुवै हारिया जी हो निर्मल बारहो निर्मल बारहो ता निर्मल जी हो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की स्वय पहुंचै नाही मनसा सत समानी जन्म रतन जिनी कटिया भले सेवन जारी कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले जी को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई जी हो रह गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याय अंतरात्मै समाले आप छट सदा रह परनै गुर बिन अवर न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थे कोई पुछो भविकिया जाय अनेक जूनी भरमावै बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाख चरणी सतगुरु सब सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवै हृदय तिना सुमाणी पीवो अमृत सदा रहो वरंग जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आंख वखाणी हर हर नित करह रसना कहया कछु न जानी चित जिन का हिर लिया माया बोलन पैरवाणी कहना सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा इहो हुआ समाओ सब सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाहो आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकता पुपाए कह करता आपे हुकुम वरताए हुकमरताया वेखै गुरमुख सह बुझाए तोड़े बंधन हुवै मुख शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो हुवै कस्यो लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुकम बुझाए सिमर शास्त्र पुन पा विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजहो तत्तै सार न जानी ते गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहण विहानी गुर कृपा ते से जन जागी जिना हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी कह नान सो तत् पाए जिसनु अन दिन हर लिव लागे जागत रहण विहानी माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है वड़ दाता जी अगन मैं आहार पहुँचावे ओ सुनो क्यों कोई न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिवा पेलाए गुरमुख सुदा संभाली है कह नान के वड़ दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जेही करतै खेल रचाया जा तिस भाणा ता जम्मिया परवार भला पाया लि छुटकी लगी तृष्णा माया मर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह जय भोग दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया हरा अमुलक है मुल न पाया जाए भुल न पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुरु जी मिले तिस नौ सिर सौंपिया विचों आप जाए जिसदा जीव तिस मिल रहे हर वसै मन आए हर आप मुल कह भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए हरास मेरी मन वनजारा हरास मेरी मन वनजारा सतगुरु तेरा सुजानी हर हर नित जपे हो जी हो लाह कटे हो दिहाड़ी यो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा कह नानक रास मेरी मन हुआ वनजारा ए रसना तू अन रसराच रही तेरी प्यास न जाए हूरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बौड़ न तृष्ण लागै आए यो अरस करमी पाईए
सत गुर मिले जिस आए, कह नानक होर अनरसा विसरे जाहर वसै मन आए। ये शरीरा मेरे आहर तुम मैं जोत रखी, ता तू जग मैं आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मैं आया। हरे आपे माता आपे पिता, जिन जियो पाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मैं आया। मन चाओ भया प्रभागम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सकिए, सोग दुख न व्यापय। गुरु चरण लागे दिन सुभागे, अपना फिर जापय। अनहत बाणी गुरु शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभा मिलिया, करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग मैं आए, कह क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मैं आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक यो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मैं ज्योत धरी। हर बिनवर न देखो कोई, हर बिनवर न देखो कोई। नदरी हर निहालिया, एह संसार तुम देख दे। वर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया, जा वे कहारी कह। हर बिनवर न कोई, कह नानके नित्रंद से। सतगुर मिले दिव दृष्ट होई। हे श्रवण हो मेरे हो, सच सुनने नो पठाए। शरीर लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मन तन हरिया। हुआ रसना रस समाणी, सच अलख विडाणी। ताकि गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो। सच है सुन नैनो पठाए, हार जियो गुफांदर रख कै। वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन। नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया।

कै वाजा पवन बजाया। एहो साचा सोहिला साचै कर गावहु, गावहु तां सोहिला कर साचै, जिथै सदा सच ते आवहे। सचो ते आवहे जा तुद भावहे, गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सत सबना का खसमै, जिस बख्से सो जन पावहे। कह नानक।

महाराज जी अज दे दिहाड़े आप जिया ने जबर का मुकाबला सबर नाल करदिया होया जालमां दियां ततियां ततियां तवियां नूं वी ठंडिया करदिया होया गरीब नवाज सच्चे पातशाह जीओ सच हक दे लई शहादत।

दयाकरणं दुखहरणं उच्चरणं नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान है।

दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिप्त न माया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो गुरु रूप सासंग जी, आप जी वडभागी हो जो हर रोज अमृत वेले गुरु कृपा गुरु बख्श सदका हाजरियां भर के गुरु दरबार दियां खुशियां प्राप्त करते हो। अज भी गुरुदेव जी की कृपा हुई है, सुभाग प्राप्त होया गुरु संगत का। सतगुरु दतार पिता महाराज ने पावन दीवाना की संपूर्णता से अज दे इलाही श्री मुख वाक बख्शिश किए हैं, जो जैतसरी की वार विचों पंचम पातशाह जी की पावन रसना तो उचारण के पावन दो सलोक अते पौड़ी आप जी ने सरवण की है। गुरु कृपा करे सभना गरों करो नामदान गुरसिखी जीवन चढ़ती कला बख्शिश करके सतगुरु जी निवाजन। अज पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु दतार पिता महाराज जी का शहादत गुरपुरब है। अज दे दिन दतार पिता महाराज ने लाहौर की धरती से जालम जहांगीर ने जो फरमान सतगुरु जी की प्रति लिया सी कि सतगुरु जी नूं तसीहे दे करके शहीद किया जाए जा उन्हां नूं इस गल लई मना लिया जाए कि वो सिखी नूं त्याग देन इस्लाम नूं धारण कर लैन। जो ग्रंथ उन्हां ने रचिया है उस ग्रंथ विच साडे मुताबक मुहम्मद साहब प्रति उन्हां दियां सिफतां दे सोहले पाए जाण। इक्की शर्तां गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी उत्ते लागू करना चाहते सन। खुसरो नूं सतगुरु जी ने पनाह दित्ती, ये भी दतार पिता महाराज जी ते उन्हां ने दोष मढ़िया। सो बेअंत कारण सन गुरदेव पिता महाराज जी की शहादत के। सब तो वड्डा कारण जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की सतगुरु जी ने संपादना सानू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दतार जी की बाणी बख्शी, जो समुची मानवता के कल्याण वाली सच हक की गल करन वाली सच के मार्ग से तोरन वाली गुरु की बाणी सी। ये बाणी उन्हां झूठियां नूं जालमां नूं पसंद नहीं सी, इस करके गुरु साहिब सच्चे पातशाह दतार पिता महाराज नूं 1606 ईस्वी के अंदर लाहौर की धरती से बहुत तसीहे दे करके भुखे प्यासे रख के पानी विचों वाल के तत्ती तवी ते बिठा के तत्ते रेते नूं शीश विच पा करके बेअंत तसीहे दे करके गुरदेव पिता महाराज जी नूं शहीद किया गया। फिर दतार पिता महाराज नूं रावी दरिया विच रोड़ दिता गया। अज भी गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन स्थान उस पावन दतार पिता महाराज जी की शहादत नूं याद करवाउंदा है। ऐसे दीन दयाल सतगुरु दतार पिता महाराज जी की शहादत नूं सतगुरां ने मिठा करके मनिया ते यही दसिया कि सानू भी मिठा करके मनना चाहिए। ता ही पंचम पातशाह जी की शहादत ते सिखां वल्लों बड़ी श्रद्धा भावना प्यार सहित ठंडे मिठे जल दियां छबीलां लाईयां जांदियां हन, जो प्रतीक है जिवें पानी विच शीतलता है, पानी विच मिठास है, पानी विच रंग है। इसी तरह गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की शीतलता नूं, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की मिठास नूं, ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के अंदर उस सच हक के रंग नूं बयान करता है ये पानी, ये छबील। ये गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने जो सानूं सिद्धांत दिता है कि हर समय हर वक्त शीतलता मिठास प्रभु रंग प्रेम विच भिज के ही अपने जीवन का निर्वाह करना है। फिर तत्तियां तवियां भी मनुख के अंदर नूं साड़ नहीं सकदियां। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की शहादत नूं कोट कोट नमस्कार है। सतगुरु कृपा करे सिखां नूं कौम नूं ये मत बख्शिश करे, ये भावना बख्शिश करे, वो अपने शहीदां दे दर्शाए हुए मार्ग ते चल सके। भुल्लां चुक्कां दी खिमा अज विशेष कीर्तन हाजरी होएगी सतगुरां दे शहादत दिहाड़े नूं समर्पित 10 बजे तो लैके 10:40 तक आप जी ने हाजरियां भरनिया हन। ऐतवार दे दिन भी इसे तरह गुरदेव जी की शहादत नूं याद किया जाएगा। सो आओ हुण अमृत बाणी का कीर्तन भाई साहिब भाई रिशपाल सिंह जी तिन्हां दे जत्थे पासों सरवण करिए जी।
ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।

अंदर सब को वेट कराईंदा बुढ़ियाई आपके क्रम कराईंदा वो वटा वट में दिनी सिरा सिर चंदेरा

कहे जन नानक जेहा तू कराहे तिहा हो कई बखियान जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जाए

प्रभ पै दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नास।

तुम मात पिता हम बारक, तुमरी कृपा में सुख कोई न जाने तुमरा उच्चे ते सगल समग्री तुमरे सूतर तुमते हो सो आज्ञा तुमरी गत मित तुम्हें नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौन दयावे ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान धरके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी से बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए कोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नचराए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी के सत्संग नभाई तिना की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी साहब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान धरके बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे। चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तह तह रशिया रियाए देखते फतेह बिरद की पाए पंथ की जी श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान चमकियां झंडे बुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत का रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता अर्जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारां गुरुधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। इन माण्यो के माण नितान्यो के तान न्यूटिया दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावे ता आने रास। महाराज जी आप जी दे चरणा अरदास बेनती आप जी दी महान बख्शिश हुई। अमृत वेले आप जी ने अपने तख्तां दे प्रकाशमान होके संगत नूं दर्शन दारे बख्श के निहाल कीता। अमृत वेले पावन हजूरी अंदर दीवान सजाए गए सजो हे दीवाना विच संपूर्ण आसा की वार ते शब्द कीर्तन होए ने। उपरंत आए दे हुक्मनामे दियां विचारां होईयां छे पौड़ियां आनंद साहिब दे जाप होए। महाराज जी समुची सेवा निभाउंदिआं बाणी पढ़द्यां कीर्तन करद्यां विचारां करद्यां आप जी दी सेवा संभाल करद्यां होईयां बेअंत पुल्लां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उद्यम बख्शिश करना बाणी दा भाव आईयां संगतां दे हिरदयां ते वसाउणा आईयां संगतां दी हाजरी दर ते प्रवान करनी सभना दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशा विदेशां विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जी बिन संगतां दूर दुराडे बिठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहीआं हन। जाप सरवण करदे आप जी दा धन्नवाद करदिआं बेंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादारा सिंघा वास्ते ऑनलाइन भेटा की महाराज जी सारी संगत की हारी दर प्रवान करनी सभना की माया सफली करनी किरत कमाइया बरकत पाया श्रद्धा भावनावान संपूर्ण करनी महाराज जी आप जी के चरणाज
ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜੀ ਤਾਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹੇ ਭਰ ਭਾਨੋ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜ਼ਾਮ ਪੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਨ ਹੋਜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛਕਿਆ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ

0: दुख हरण उचरण नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिपत न माया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सत्कारयोग साध संगत जी, सतगुरां दी अपार बख्शिश श्रमत हुए अमृत वेला सतगुरां ने सानू बख्शिश कीता है। तुसी बड़े प्यार सत्कार भावना दे नाल अमृत वेले सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठ के संपूर्ण आसा की वार दे शब्द कीर्तन सरवण कीते ने। उपरंत अज दे हुक्मनामे दीआं विचारां गुर इतिहास साडे बहुत सत्कारयोग भाई साहिब भाई सिकंदर सिंह जी उन्हां दी रचना तों सरवण कीते अरदास विच शामिल होइओ। पावन पवित्र हुक्मनामा सरवण कीता, सतगुरु कृपा करन, साडा सारिआं दा गाविआ सुणिआ महाराज अपने दर ते प्रवान करन। इसे तरह गुरु चरणां नाल जुड़े रहिए। अज शहीदां दे सरताज तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज जी दा शहीदी दिवस है। जो आप संगतां दे सहयोग नाल इस पावन अस्थान ते बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मनाया जा रहा। प्रबंधक वीरां वल्लों जो शाम दे दीवानां विच उपराला किया गया सुखमणी साहब जी दे जाप 7:30 बजे तो लैके 9:45 बजे तक होंदे ने, उहदे विच भी आवश्यक संगतां हाजरी भर दे। आप संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। इसे तरह गुरु चरणां नाल जुड़े रहिए। बेनती है 21 जून मिनी कॉन्फ्रेंस इन द मेन हॉल स्टार्टिंग 11:30 बजे होएगी जी। 28 जून डॉक्टर अलंकार सिंह जी ऑफ पटियाला यूनिवर्सिटी विल डू द कीर्तन फ्रॉम 11:20 तो लैके 12:30 बजे तक करेंगे। आप संगतां दे चरणां च बेनती, जरूर पहुंचने की कृपालता करनी जी। 26, 27, 28 26 नूं अखंड पाठ साहिब आरंभ होणगे धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी दे विआह पुरब की खुशी दे विच, जो हर साल श्री शंकर दीआं इलाका निवासी संगतां वल्लों अते आप संगतां वल्लों इह उपराला कीता जांदा। इस साल भी महाराज दे विआह पुरब 26, 27, 28 नूं मनाए जाणगे जी। आप संगतां दे चरणां च बेनती, जरूर पहुंचने की कृपालता करनी। आओ जो सरबत दे भले वास्ते सहज पाठ चल रहे ने, सत्कारयोग भाई साहिब भाई नवनीत सिंह जी पहुंच चुके ने, उन्हां दी रचना तो सहज पाठ सरवण करिए जी। गुरु के लंगर तैयार ने, छक के जान की कृपालता करने जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी वडभागी हो जो संगती रूप अंदर गुरु चरणा विच जुड़ बैठे हो। समा होया अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ दा। पावन अंग 444 तो अज श्री सहज पाठ अगे प्रारंभ होने हन। आप जिया ने प्यार सहित हाजरियां भरनिया हन जी। 444 अंग तो श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं।

जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया पर

भाव। हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर रस पाया गुरमत हर ध्याया, तुर मस्तक भाग पुराण जियो। तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग, हर नाम में हर गुण गाया। मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी, हर नाम में हर सुहाया। ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया, मिल सतगुरु मनुआ मान जियो। हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर मंतन मीठ लगान जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो। तिन हम चरण सरे वह, खिन खिन पग तो वह, जिन हर मीठ लगान जियो। हर मीठा लाया परम सुख पाया, मुख भागा रत्ती चारे। गुरमत हर गाया हर हार उर पाया, हर नामा कंठ तारे। सब एक दृष्ट समत कर देखे, सब आत्म राम पछान जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो। सत संगत मन पाई हर रसन रसाई, विच संगत हर रस

आराध्या मुख मस्तक भाग सुभागा जन नानक हर कृपा तारी मन हर हर मीठा लाए जियो हर दया प्रभ तारहु।

तिन अमृत पीवे मन लागा गुरमत भाउ जियो मन हर हर भाउ गुरु गुर करे पसाउ मन हर हर भाउ गुर करे पसाउ जीवन मुक्त सुख होई जीवन मरण हर नाम सुहेले मन हर हर हृदय सोई मन हर हर वसिया गुरमत हर रसिया हर हर रसक गटाक पियाओ जियो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरन न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो हर अंतर बाहर हर प्रभ एको इहो जीड़ा रखिया न जाए जियो क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय जिसकी वस्त सो ले जाए जियो मनमुख करन पलाव कर परमे सब औखद दारू लाए जियो जिसकी वस्त प्रभ लय स्वामी जन उबरे शब्द कमाए जियो जग मरन न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े।

दुख मिटे। हर रामै नाम समाया, हर जन प्रभ रल एको हुए, हर जन प्रभ एक समान जियो। तुर मरण लिखाया गुरमुख सोहाया, तुर मरण लिखाया गुरमुख सोहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो। जग उपजै बिनसै बिनस बिनासै, लग गुरमुख अस्थिर हुए जियो। गुरमंत्र दृढ़ाए हर रस करसाए, हर अमृत हर मुख।

जग उपजै बिनसै बिनस बिनासै लग गुरमुख अस्थिर हुए जियो। आसा महल्ला चौथा छंत

हम मूरख मुग्ध शरणागति, मिल गोविंद रंगा राम राजे, गुर पूरे हर पाया हर भगत।

अकथा हर अकथ कथा किछ जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखाणी राम सहजे वखाणी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जप एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया।

प्राप्त हो जाए। प्रभु सुघर स्वरूप सुजान स्वामी, ताकि मिटे न दाते जल संग राती माछुली।

आद मद अंत प्रभ सोई। सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे, पतत पावन

பண்ணி சம்பத்தா பலா.

ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।

ठीक है चलो, ठीक है चलो।

Thank you.

ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਣ ਤੇ ਮੁਕ

casa.

give budget

ਆਪਣੇ

0: ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੇਵ ਮਨ ਰਾਖਾ ਹਰ ਹਰੇਕ
1: ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਇਆ

on board.

ಸೇವೆ ದೊರೆತು